0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू

0: நேயர்களே, இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की सहयोगी टीम सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया गठबंधन और सीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है तो दूसरी तरफ विपक्ष निराश और हताश है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बिठाएं और सीजीपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाएं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 45 मेट्रो स्टेशन आज शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ी रद्द कर दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच अपने पड़ोस और उससे परे के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक निहितार्थों पर बारीकी से नजर रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकगाल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। और अंत में भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बहरम में विश्व बाउल चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक सुनिश्चित कर इतिहास रच दिया है। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप सब? वेल, मैं तो आपसे इतने दिनों के बाद मिलकर ना बहुत अच्छी हो गई हूँ और बस इंतजार कर रही थी प्रियंका का भी हॉट सीट छोड़े और मैं बैठ जाऊं अपना ये माइक लेकर, क्योंकि आज वीकेंड पर आपसे जब मिलने आती हूँ ना तो सच मानिएगा इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, आज किस बारे में बात करनी है, क्या बात करनी है। लेकिन जो आज टॉपिक और विषय लेकर आई हूँ ना, वो आपको बहुत पसंद आने वाला है और मेरे भी दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, आज बात करेंगे जो गाना आप सुन रहे हैं उस बारे में, सफर के बारे में। इंग्लिश वाला सफर नहीं, हिंदी वाले सफर के बारे में। जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम आशियाना में मैं दीपांशी करती हूँ आपका तहे दिल से स्वागत।

दूर चले हैं नई डगर पर, मन में एक उजियारा है, दूर कहीं उस क्षितिज पार से मौसम ने पुकारा है, छोड़ के पीछे शोर नगर का, चल दी या अनजाने देश, नया सफर है, नई डगर है, या है प्रकृति का प्रवेश। हवा चले जब मस्त, पवन सी धुल जाए मन का मैल, नदी पुकारे कल कल करके प्रकृति का ये खेल, राहों के पत्थर भी जैसे कोई बात बताते हो, थके हारे राही को एक नया गीत सुनाते हो, मंजिल की परवाह किसे है, सफर ही तो अपना मीत है, हर एक मोड़ पर, हर एक मोड़ पे लिखा

हवा कोई नया संगीत है। चलो चले हम बनकर पंछी, खुले गगन की छाओं में सफर का असली मजा तो यारो बहती हुई इस ठाओं में। जी हाँ, सफर, जब सफर की बात करते हैं, एक नए देश की, एक नए शहर की, कभी कुछ नई नदियों को देखने की, घूमने जाने की, कुछ पर्वतों के बीच जाने की जब बात करते हैं ना, तो एक जो नई उमंग, एक जो मस्ती का एहसास, बेपरवाही का एहसास जो मन में जगता है ना, बस आज सोचा क्यों नहीं उसी के बारे में बात की जाए आपसे। हम सभी अपने कामों में उलझे हैं, जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हैं, बहुत कुछ पाना है, बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल करने हैं, सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं, उस मंजिल तक पहुंचने तक जो रास्ते तय करने पड़ते हैं, उस रास्ते की थकान भी अपनी है। तो कभी लगता है कि एक राही बना जाए और उन रास्तों पर चलते चलते थोड़ा सा ठहराव दिया जाए, ठहरा जाए, कुछ खूबसूरत सी जगहों को देखते हुए मन में बसाई जाए एक नई उमंग की लहर। और वो होगी कैसे, जब हम थोड़े से ठहरते हुए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के जोश के साथ एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए रुकते हैं कुछ रास्तों पर। बात कर रही हूँ ट्रैवल की, बात कर रही हूँ सफ़र की। जी हाँ, ट्रैवल और सफ़र जितना हमको आसान लगता है, उतना ही मुश्किल लगता है जब हम बात करते हैं उसकी प्लानिंग की। वेल, आज हम बात करेंगे कि क्या सोलो ट्रैवल कुछ अलग है, सोलो ट्रैवल पर जाना आसान है या कठिन है। आज बात करेंगे, यदि आपको खुद से मिलना है, अपनी पहचान को थोड़ा सा और पहचानना है, अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, अपनी वीकनेसेस के साथ लड़ना है या शायद उनसे कोप अप करना है, तो सोलो ट्रैवल इज समथिंग जो शायद हमको एक्सप्लोर करना चाहिए और शायद हमने अभी तक उसे एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इस नई सफर, इस नई डगर के बारे में बात करेंगे इसी कार्यक्रम आशियाना में। आप कहीं जाइएगा नहीं, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब भी हम ट्रैवल की बात करते हैं, कहीं घूमने जाने की बात करते हैं ना, तो हमारा सबसे प्यारा जो साथी है, सबसे खूबसूरत जो साथी है, वो होता है संगीत। क्योंकि ये जो संगीत है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी रूह से जुड़ा है ना। बहुत बार ट्रैवल करते हुए लगता है ना कि कुछ अधूरा सा है। भाई, मैं तो जब भी ड्राइव करती हूँ अपनी कार में बैठने से पहले, सबसे पहले मेरा रेडियो ही ऑन होता है और उसके बाद मेरी गाड़ी अपने सफर पर निकलती है। और जब साथ हो सोनू निगम की इस मखमली आवाज का, तो जो सफर है वो शायद थोड़ा सा और खूबसूरत बन जाता है।